चार दिन नेड़े पहुंचे। मत्से रंगड़ तक पहुंचन दी स्कीम कर ली। एक पुरानी थे तो ठीकरियां इकट्ठियां कर एक बोरी विच भर लिया। अपने केस पिछे नू सुट चौधरी जट्टां वाला भेस बना लिया। तलवारा चोलियां दे हेर लुका लिया ते हरमंदर साहब वल नू तुर पए। दोनों शेर दर्शनी ड्योड़ी जा पुजे। बूहे दे सज्जे हाथ लगदी बेरी नाल सिंघां ने घोड़े बन ले। भाई सुखा सिंह ने बोरी नू मोढ़िया दे चुक लिया। पहरेदारा ने सोचिया कि किसे पिंड दे नंबरदार मामला उतारन वास्ते आए होणगे, सो किसे ने भी उहनां नू रोकिया नहीं। भादों दी दुपहर होण करके उस वक्त जोर दी नेरी वग रही सी। सिंघां ने अंदर लंघ मन ही मन अरदासा कीता, हे सच्चे पातशाह तेरे सिंघां दा वार खाली ना जावे। की वेखदे हन कि हंकारी मस्सा पलंग ते बैठा हुक्का पी रहा है, कंजरी नचदी पई है। सुखा सिंह ने अंदर लंघदे ही बोरी नू पलंग दे थले सुट दिता। ज्यों ही मस्से ने बोरी नू वेखण वास्ते अपना सिर हेठां झुकाया तां भाई महताब सिंह ने तलवार दे इक्को वार नाल ही मस्से रंगड़ दा सिर वगा के हे ओ

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे लिए आख्या, कबीर कुकरवान को मुतिया मेरो ना गले हमारे जेवरी जे खिंचे पै जाओ। जिस वेले उसने अपने आप में सग कहा, कुत्ता के आखन लगे, तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हाँ। नंद लाल उसे सुन ली तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नू इन्ने प्यारे होंदे ने कि छेज ते चढ़ जांदे हो, बाबा मैनू हाले ये अवसर प्राप्त नहीं होया, ये मौका नहीं मिलया कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी दी छेज ते बैठ मां। नंद लाल आगरा ते बेंत पदार्थ सन तेरे खाण पीण वास्ते इत्थे की मिलता है, इत्थे की मिलता है। ते नंद लाल ने बड़े सुरूर विच आके, बड़े वजित विच आके

मैं पूछे तेनू इत खाण वास्ते की मिलता है। नंद लाल बड़े सरसारी कहन लगा सुनो सुनो गई सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी वास्ते जिस वेले प्रसादा आंदा है थाल पोस के सेवादार बड़े इतिहास नाल बड़ी परहेजगारी नाल और बड़ी सावधानी नाल लियांदा ना ते मालक पलंग ते बैठ के सुनू छकदे ने छकदे ने ते फिर तू की करना है। आखन लगा जी मैं नींद ला के थले बैठ जाता हाँ उन्हां दे जोड़े विच बह जाता हाँ मंजे दे पलंग दे कोल बैठ जाता हाँ। सतगुरु बड़ी तबीयत नाल शेर होके आगा के प्रसादा सकते ने मैं सच्चे पातशाह दे मुखारविंद वल नूं वेंदा रहिंदा हां तकदा रहिंदा नींद नाल तकदा ढिड भर के तकदा हां कि सतगुरु प्रसादा पै सकते ने। जदों छक के सेवादार जल लिआंदा है चूड़ा करन वास्ते रोली करन वास्ते ते सच्चे पातशाह चूड़ा करके पानी धरती ते सुटदे हन उस वेले उन्हां दे दंदा नूं लगे हुए रेजे भोरे धरती ते डिग पैंदे हन। मैं पट के उस कराना हां ए मेरी फराक है मैं किसे होर नूं चुकण नहीं दिंदा फराक सुन ली मैं वो रेजे धरती ते पए हुए बड़े इतमी नाल नाल बड़े प्यार नाल सकदा हां और तृप्त फिरदा हां अगा के रहिंदा हां हर वेले प्रसन्न हां ते ए मेरी खुराक है ए मैनू बख्शिश ए मैनू रहमत उदों होई है जदों मैं आख्या सी कि लै लो दिल ते मैं आख्या सी जक निगाहे जान फजाइश बस बबत दरकार मां उस दिन तो सुरूर है उस दिन तो मस्ती है उस दिन तो खेड़ा है।

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिदे नाल किस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते नाम तेरो केसरो लै छिड़का रहे, कहते वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का कर दे ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की गल कहते हैं।

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखा नु दूर करन वाला नाम है पर किस तरह, आठ पहर आराधी, अठे पहर उदी आराधना करिए, उदे नाल मन जोड़िए ते दुखा दा नास होवेगा। डॉक्टर भी कह दिंदा है ना, दवाई ते दित्ती है, ए ना होवे कि दो खुराकां खा के ते फिर छड़ देवे कि थोड़ा जिहा आराम ते आ गया है हुण दवाई दी की लोड़ है। दवाई खाई जानी है जदू तक पूरी तरह आराम नहीं आता। एक बार करो रसना पवित्र, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाह। अज वो पवित्र दिहाड़ा जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक बारी जपो जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे, संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहरदे संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम का एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिथे होर संगतां आईयां एक लाल चंद नाम का पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिथे गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहे। लाल चंद दर्शन करन आया, गुरु हर कृष्ण साहब नु देखिया।

पंडित लालचंद ने गुरु साहिबां नूं कहा महाराज इहदे कोल गीता पढ़वाओ। सतगुरु जी हस पए ते हस के कहन लगे लालचंद बड़ा चतुर निकले, बड़ा सियाना निकले, वादा ते करके गया सी उन्हूं लियावांगा जिन्हें गीता कदी पढ़ी नहीं, पर उन्हूं लैके आया है जिहड़ा बोल ही नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इन्नी गल कह के फिर सतगुरु देख दे छजू चीवर वाल हन ते कहंदे लालचंद नूं ने चंगा लालचंद जिन्हों भी लैके आ गए यह गुरु नानक का घर ऐसा है ये जेड़ा जैसी भावना लैके आंदा है उसनूं ओहो जिहा फल मिलता है। तेरी इच्छा है इहदे कोल गीता सुननी ते गुरु नानक तेरी इच्छा पूरी करेगा। गुरु साहिबां दे हाथ विच हमेशा एक छड़ी हुंदी सी खूंडी, ओ खूंडी गुरु साहिबां ने छज्जू चीवर दे सिर ते रखी मेर परी निगाह दे नाल छज्जू चीवर वल तकिया ते मुस्कुरा के कहंदे ने छजू वो पाई सिखा पंडित जी दी इच्छा है के तू गीता सुनावे। पाई सिखा इन्हां दी इच्छा पूरी कर पर सुन कली गीता पढ़नी नहीं नाल श्लोकां दे अर्थ भी करके दसने हन। आखो सतनाम श्री वाहे। जद गुरु की मेहर की नजर होई सिर ते गुरु साहबा ने अपनी छड़ी रखी ते ओ छज्जू चीवर जिदे मुंह विचों लारां वगदियां सन वाल खिलरे शरीर की सुध नहीं रंग ही बदल गया गुरु की शो मिली चेहरा ही होर हो गया जिदे मुंह विचों लारां वगदियां सन बैठा दरबार विच इधर उधर झाकदा सी जिवें बावरे शदाई बैठे हुंदे ने हुण रंग ही होर हो गया। हाथ जोड़ के परे दरबार विच खड़ा होया और फिर चरना ते मत्था टेकया और फिर मत्था टेक के फिर खड़ा होया हाथ जोड़े ते कहन लगा दाता तेरा शुक्र है तू मैनू नवा जीवन दिता है शरीर दी सुध दिती दुनिया दी सुध दिती दुनिया दी सोझी दिती ते पातशाह हुण हुकम कर। साहब जी कहन लगे छज्जू गीता पढ़ के सुना नाले अर्थ करके सुना ते छज्जू चीवर कहंदा दाता हुण ते तेरी मेहर हो गई है हुण ते तू हुकम कर ए गीता ते की सारी कायनात पढ़ के सुना दें। आखो सतनाम श्री वाहे। सारी दुनिया दा हाल दस दें इतनी तेरी मेहर हो गई ते छज्जू चीवर पंडित दे सामने बैठा गीता पढ़ता है नाल श्लोक दे अर्थ कर करके दसदा है ओ ज्यों ज्यों गीता पढ़ता है ते पंडित लाल चंद कोल बैठा रोई जांदा ज्यों ज्यों सुनदा है अखां विच अथरू डिगदे हन ते जद गीता दी ए सारी कथा दा भोग पया ते लाल चंद हुण उठया भज के चरण पकड़े और चरना ते सिर रख के ज्यों रोन लगा कहन लगा महाराज मैनू खिमा कर
मैं भूल गया तेरा परतावा लैण आया असी औगण आ रहे तेरा परतावा लैने ते सतगुरु कहंदे ने लाल चंद रो ना उठ ओ लाल चंद तेरे सदका एदे भी भाग जाग पे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। और अज भी हरियाणे दे विच ए पंजोखरा साहब गुरुद्वारा इस घटना की याद अज भी दवांदा है और जेड़े लोग उते श्रद्धा भावना नाल जांदे हन उन्हां दी मनोकामना अज भी पूरियां होंदियां हन। और फिर गुरु साहब दिल्ली गए, समा समाप्ति दा हो गया है, इतिहास काफी लंबा है पर समा इतना नहीं। दिल्ली जद महामारी फैली हजारां लोग मरण लगे तां उस वक्त गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने अपने चरण धो के चरण पौल दिती और उहदे नाल इह जिहड़ी बीमारी सी दूर हुई। और अज भी देखो कदी दिल्ली जाओ जिन्हां हाली दर्शन नहीं कीते गुरुद्वारा बंगला साहब अज भी उत्थे अमृत दे सोमे उसे तरह पे चलदे हन और अज भी जिहड़े श्रद्धा नाल जांदे हन उहनां दे दुख दूर हुंदे ने ते जिहड़ियां भी संगतां जाके मत्था टेकदियां ने अपने आप उहनां दे मुंह तों निकलदा है श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। आओ शब्द की आखिरी पंक्ति पढ़ के इत्थे करिए समाप्ति। और हुण समा तो तकरीबन हो ही चुका है 7:10 तो 8 तक दशमेश दरबार हाजरी भरनी है और कल 7 to 8 इस स्थान ते फिर आपां सारे गुरु जस करांगे। आओ आखिरी पंक्ति सारे रल के पढ़िए।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलदी हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे, जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगा। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की।

फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते मंगना भी है तो एक बार मंग लो, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। ते मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण साहिब सानू एक गल समझांदे ने

नहीं है, चला जा। कहना नहीं, कुछ ते दे के तोर, कुछ ते मेरी चोली पा, मैं तेरे को लाए बगैर नहीं जाना। इना ठीठ बनदा है कई बार मालिक किनिया गल्लां करदा, देन वाला बहुत गल्लां करदा है पर वो बर्दाश्त करे, हर गल नूं सुने, क्योंकि ठीठ बनदा। जब तक ठीठ नहीं बनदा तद तक दात नहीं मिलनी। पावो दान ठीठ होए मन, ठीठ बन के मंगी जा मंगी जा मंगी जा। हुण गल आ गई तीसरे गुण दी। तीसरा गुण है जी मंगता डर ना छड़े। किवें ताटी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े। दर फड़ के बह जाए ते दर ना छड़े। हे मालिक मंग रहे तीठ बन गए, दर नहीं छड़ना, दात लैके जान। पर हुंदा की है, असी सिर्फ मंगना ते जान लेने, मंगना आउंदा नहीं। मंगना की है ए भी पता नहीं, मंगना किवें है ए भी नहीं जानदे। ते जिहड़े मंगते दे गुण ने ओह ते साडे अंदर है ही कोई नहीं। जे होवे च किसी अंदर एक आ जांदा है, लो जी मंगना है, मंगी जांदा। कुछ समा मंगिया नहीं मलिया चला गया। किसे विच दूजा गुण आ जांदा है, तीठ बन के बह जांदा है। इतना टीठ बन गया कि मंगी जा रहे हैं नहीं मिले, आओ भी चला गया। तीसरा गुण सी ग्रहण नहीं करते कि जेड़ा बड़ा जरूरी है। तीसरा गुण है मंगता दर ना छड़े। क्योंकि कई बार हुंदा कि असी मंगी जाने टीठ भी बन जाने, जो दात लैण दा समा आउंदा उदों असी दर छड़ के चले जाने, बस उदों सानू ओ दात नहीं मिलदी। ताड़ी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े, दर नहीं छड़ के जाना भावें कुछ हो जाए। साहब कहने ना आखिर विच